0: किताब टीमा के अंदर गुरु उन्होंने नारा लगा मेरे किले में
1: Pro 4 RRI
2: Pro 4 RRI
1: Pro 4 RRI

ओम स्वास्तियस्तु, ओम अविघ्नमस्तु नमः सिद्धम्, ओम सिद्धिरस्तु तत् अस्तु यन्नमः स्वाहा।